चल ज्योतिपाल दसम से तिसाई सिटे दसम से असु हत दक्वा जीवतुनत श्रीलंका सिनेमा गीते अमरणीय राजुल सलकन जान हुर्दे अमरणीय गायक ओगे मुर्दु सुवंद दिन सत्वा बावे फिरुनु हंडे श्रीलंका संगीते असम सम सटानक तबुआ सिनेमा गीत तुंदागर अधिक प्रमाण गायना कल ओह ओब माहट दुन सेनेस सांद की निसंद की मगे रानमैन के ओबट मगे आदरवेन गीत अदत जनप्रिय ओगे हंडट तिबु सुवंद संवेदी सत्य मनुष्य के में फिरनु जनता ओगे सिद्धि ना गत्ता रूपवाहिनी सिनेमा वेदिका संगीत सेलुम शेस्त्र वल सुविशेष सटान ओतबाति बिनो ज्योतिपाल के गीत असन विट अदट सितट सोयक मतक सुवंदक सा अमरणीय संगीत रसयक लभिनवा

हारून लंत्राल दसम से तीसरा त्रेसी ते देदास देखदा को श्रीलंका बाइला सा जनप्रिय संगीत विशेष स्थान अगत अवरणीय गायक होगे सतुटुमत नारतन में जनता और लंगावन गायन शैली निशा ओ दशक गणनावक जनप्रियत्व इहलिंग सिटिया बाइला संगीत नव रसयक नव शब्दक सा वेदिका संग सजीवीकरण गिना कलाकार मैनिके मालिकावे सीनी मल्ली सीता मन में मल मैनिके वन गीत होगे नामे अमरणीय कला होगे गायन शैली सरल सतुटु सा जनताव समग सृजु संबंधक अतिकल विलासिताव की प्रीति बुना विविध संगीत खंडायम समग वेडकरमिंग श्रीलंका बाइला संगीते वगेम अनिकुत गीत जात्यंत्र वेदिका वलट गिनगिय कलाकार हरुण लंत्रागे गीत अदत उत्सव वल विवाह वल सह सतुट अवस्था वल अनिवार्य अमुत्ते सतुट नर्तनीय सह जीवित रसे मतकरण अमरणीय अंडा

टोनी हसन श्रीलंका संगीत सा हिंदी जनप्रिय संगीत विशेष स्थानीय जनाद रेट आदरणीय गायक ओगे सतट मत नर्तन में वेदिका सजीवीकरण गायन शैल्य निशा ओगे बाइला सा अनिकुद गीत लोक प्रसिद्ध नाम बहुत पत्तुना इदस नम से हत्यावत असुअ दशके बाइला संगीत नव शब्द सा सजीवीकरण गिना कलाकार ओगे गीत वोल्ट तिबू सरलत्व सतुट सा जनता व समग्र सृजु संबंध निशा ओगे गायन विशेषात्व गता उत्सव विवाह सा सतुट अवस्था वल्दी ओगे गीत अदत अनिवार्य वादने वेनो सिंगल संगीत जनप्रिय कल फाइनियंस अतरट ओगे गी नमद अतुलत वेनो टोनी हसन गे संगीत अदत जीवमान सतुट नर्तने सा श्रीलंकीय श्रासे मतक करवना अमरणीय हांडा

सुनील शांत दस नंबर से पहले उपतला भाई दस नंबर से आसुग के साधारण विनोद के श्रीलंका संगीते पुरोगामी अतिशय गाउरोवेट पात्रों संगीत अन्य कुसाह गायके और श्रीलंका संगीते के स्वदेशीय राशे नवसुरवीम सा निर्माण सीलत्वे गिना आयक सिंगल संगीते के स्वदेशीय हंडक नव मंपेतक सह सत्य राशे गिना प्रमुख कलाकार ओगे गीत सरल गैंबुरु संवेदिसा श्रीलंकीय संगीते हदवतट लंगावन रसक गिनेनवा संगीत अध्यापने गीत निर्माणे सा सुरवीम तुल ओगे दायकत्वे श्रीलंका संगीते इतिहासे विशाल सटाहनक कला सुनील शांतगे गीत अदत असन विट श्रीलंकीय संगीते सत्य रसे निर्माणशीलत्वे सा सौंदर्य तावमत जीवमानाय

एंटन रोड्रिगो श्रीलंका बायला सा जनप्रिय संगीत विशेष स्थानीय गत जन हृदय आदरणीय गायक ओगे सतुटुमत नर्दनमय वेदिकाव सजीवीकरण गायन शैली निशा ओ बायला लोके अमरणीय नामक बवट पत्तुना हत्याव असुव दशके बायला संगीत नवरसज्ञना जनप्रिय गायक मेनिके मालिकावे सीनिमल्लि मल मेनिके वेनी जनप्रिय बायला गीत ओगे नामे समग संबंध उना ओगे गायन शैली सरल सतुटु सा जनताव समग सुदु संबंधक एतिकल विलासितावकिन पिरी तिबुना उत्सव विवाह अवस्थावलदी पवा ओगे गीत अनिवार्य वादने उना एंडन रोड्रिगो संगीते अदत जीवमान सतुट नर्तने सा श्रीलंकीय बायला रसे मतक्रोण अमरणीय हंडाक।